ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। जिन्हा सिंघा सिंघनिया धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया

कीमत पाए न कहया जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए। वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा केता केवड़ चीरा रहाओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईया।

जीव परया। शैल पत्थर मह जंतु उपाई, ताका रिज का गह कर तरया। मेरे माधु जी सत संगत मिले सो तरया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किसकी तरया। सिर सिर जिक संबाहे ठाकुर, काहे मन भाव करया। ऊडे ऊडा वै सह कोसा, तिस पाछे बचरे छरया। तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मह सिमरन करया। सब निदान

जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भय जिन हर त्याया जी तिन तूटी जा।

तो भावै सोई थीसी जो तू देहे सोई हो पाई रहाउ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनु कृपा करहे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा।

सोए जन नानक गुरमुख प्रगट हुए आसा महला पहला तित सरवरडै पहले निवासा पानी पावक तिन्हे किया पंकज मुह पग नहीं चालै हम देखा तह डूबी अले मन एक न चेतस मूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाउ ना हो जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म भया प्रणवत नानक।

को पल मोह बद की घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचरिया स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जब उदकर्क करा कर तारा प्रजा तर्क तब देह अपारा जब आकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब।

तब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहरिहु ताके ताप तनक मह हरिहु रिद्ध सिद्ध कर्मु सब हुई दुष्ट छाह छवस कै न कोई एक बार जिन

माही जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे तिस साहिब की टेक नानक मन माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तू तो।

नित-नित जीड़े संभालियन देखेगा देवन हार तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कवन समार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देव सजन असी सड़िया जो होवे साहिब सिओ मेल घर घर एहो पहुंचा।

0: रब सिमरत कछ बिगन न लागे,
1: रब कै सिमरन अंदिन जागे,
0: रब कै सिमरन भाव न व्यापे,
1: रब कै सिमरन दुख न संतापे,
0: रब का सिमरन साध कै संग,
1: सर्वनदान नानक हर रंग,
0: रब कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ

0: मन की मल जाए।
1: अमृत नाम हृदमाए समाए,
0: रब जी बसह साध की रसना,
1: नानक जन का दासन दसना।
0: रब को सिमरह से तनवंते,
1: रब को सिमरह से पतवंते,
0: रब को सिमरह से जन परवान,
1: रब को सिमरह से पुरख प्रधान,
0: रब को सिमरह से बेमोहताजे,
1: रब को सिमरह से
2: सर्व के राजे,
0: रब को सिमरह से सुखवासी,
1: रब को सिमरह सदा वासी।
0: सिमरन ते लागे जिने आप दयाला,
1: नानक जन की मंगै रवाला।
0: रब को सिमरह से पर उपकारी,
1: रब को सिमरह तिन सद बलिहारी,
0: रब को सिमरह से मुख सुहावे,
1: रब को सिमरह तिन सुख बिहावे,
0: रब को सिमरह तिन आत्म जीता,
1: रब को सिमरह तिन निर्मल रीता,
0: रब को सिमरह तिन आनंद।

0: प्रभु कै सिमरन निचले आसन, प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार, सिमरह से जन जिनको प्रभु मया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए,
1: हर सिमरन लग वेद पाए,
0: हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते,
1: हर सिमरन नीच जहां कौन जाते,
0: हर सिमरन

0: जल धोवे बहुदे अनिद
1: शुद्ध कहा होए काची पीत
0: मनोहर के नाम की महिमा ऊज
1: नानक नाम उदरे पतत बहमूच
0: बहुत स्याणप जम का बहु व्यापै
1: अनेक जतन कर त्रसन्ना त्रापै
0: एक अनेक अगन नहीं बुझै
1: कोट उपावदर गह नहीं सिजै
0: छूट स नाही उपयाल
1: ओहे व्यापै माया जाल
0: अवर करतूत सगली जम डान
1: गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै
0: हर का नाम जब

0: कहा बुझारत बुझे डोरा
1: तो समझे पूरा
0: कहा विष्णु पद गावे गुंग
1: यदन करे तो पीसर भंग
0: कह पिंगल पर्वत पर पवन
1: नहीं हो।

0: दृढ़ कर मन मन प्रतीत
1: वे मुड़े जीत
0: वैर विरोध काम क्रोध मोह
1: झूठ विकार मालो त्रो
0: याहू जुगत बिहाने के

0: काकू की जय। सद नमस्कारा
1: के मन लगा प्रमिठा
0: सर्व सूखता हूँ मन उठा
1: जन अपना हुक्म मनाया
0: सर्व सुख नानक चिन्ह पाया
1: अगंत साहु अपनी दे रात
0: हाथ पीठ बरत अंध उलास
1: अपनी मान कछ बोर सोले
0: अज्ञानी मन रोष करे
1: अपनी प्रतीत आप ही खो।

0: प्रसाद शक्ति अमृत खाहे।
1: किस ठाकुर को रख मन माहे,
0: यह प्रसाद सुगंध तन लावे।
1: किसको सिमरत परम गत पावे,
0: यह प्रसाद वसह सुख मंदर।
1: सहत्याय सदा मने अंदर,
0: यह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना।
1: आठ पहर सिमर हो तिस रसना,
0: यह प्रसाद रंग रस भोग।
1: नानक सदा त्याय त्यावन जोग,
0: यह प्रसाद पाठ पटम बरहलावे।
1: सहत्या कतवर लुभावे,
0: यह प्रसाद सुख सेज सोई जय।
1: मन आठ पहरता का जस गा विजय,
0: प्रसाद सब को मन।
1: मुखता को जस रसन बखान,
0: प्रसाद तेरो रहता धर्म।
1: मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म,
0: जपत दरगह मान पावे।
1: नानक पद से ती घर जाव है,
0: प्रसाद आरो कंचन देही।
1: लिव लाभ तिस राम स्नेही,
0: प्रसाद तेरा ओला रहत।
1: मन सुख पावे हर हर जस कहत,
0: प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके।
1: मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके,
0: प्रसाद तुझको न पहुँचे।
1: मन सास सास सिमर हो प्रभु उचे,
0: प्रसाद पाए जर लवले।
1: नानक ताकी भगत करे,
0: प्रसाद आपूखन बहरी जय।
1: मन ते सिमरत क्यों आलस की जय,
0: प्रसाद अस्व हस्त अस्वारी।
1: मन ते प्रभु को कबू न बिसारी,
0: प्रसाद वाग मिलक धना।
1: राख परोए प्रभु अपने मना,
0: तेरी मन मंड बनाई।
1: उठत बैठत सत्य सहत्याई, ऊहा नानक तेरी रख।
0: प्रसाद करे बुन बोधान,
1: मन आठ पहर कर तिसका ध्यान।
0: प्रसाद तू आचार व्यवहारी,
1: किस प्रभु को साथ साथ चितारी।
0: प्रसाद तेरा सुंदर रूप,
1: सो प्रभु सिमरहु सदा अनूप।
0: प्रसाद तेरी निकी जात,
1: सो प्रभु सिमर सदा दिन रात।
0: प्रसाद तेरी पत्र है,
1: गुरु प्रसाद नानक जस कह।
0: प्रसाद सुन करन नाल,
1: जे प्रसाद पे कह विस्माद।
0: प्रसाद बोल है अमृत रसना,
1: जे प्रसाद सुख सहज बसना।
0: प्रसाद हस्त कर चल है,
1: जे प्रसाद संपूर्ण फल है।
0: प्रसाद परम गत पाव है,
1: जे प्रसाद सुख सहज समाव है।
0: ऐसा प्रभु त्याग वर गत लागो,
1: गुरु प्रसाद नानक मन जागो।
0: प्रसाद

0: राष्ट्रपति साध के संग मुख उज्जल होत
1: साध संग मल सगली खोत
0: साध के संग मिटे अभिमान
1: साध के संग प्रगटे सो ज्ञान
0: साध के संग बुझे प्रभ नीरा
1: साध संग सब ओतन वेरा
0: साध के संग पाए नाम रतन
1: साध के संग एक ऊपर जतन
0: साध की महिमा बरने कौन प्राणी
1: नानक साध की सभा ब्रह्मा है समानी
0: साध के संग अगोचर मिले
1: साध के संग सदा पर फुले
0: साध के संग वह बस पंचा साध संग हुए सब की रेन साध के संग न कतहू तावे साध के संग माया ते पिन
2: साध संग नानक प्रभु सुप्रसन्न
0: साध संग

0: जैसे तारू पर आकाश।
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान,
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान,
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे ऊंचा,
0: मैंने अपना है सब ते नीचा,
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन पे
0: नानक दिन प्रव्याप करे,
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना,
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना,
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया,
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया,
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी,
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी।

0: ब्रह्म ज्ञानी ने धावत बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी के होए सो भला
0: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी के एके रंग
0: ब्रह्म ज्ञानी के बसै प्रभु संग
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सब जागत
0: ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
1: ब्रह्म ज्ञानी के होए चिंत
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाव
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदा कर
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
1: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बकाने
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुग जुग जी का दाता
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण

0: निमक निमक ठाकुर नमस्कार है। नानक परस सगल निस्तार है। अष्टपदी
1: मिथ्या नाही रसना परस
0: मन में प्रीति निरंजन दर्श
1: पार त्रय रूप न देखे नेत्र
0: सादगी टहल संत संग हेत।

0: दुख ते रहत
1: नानक कोट मध्य को ऐसा परस
0: वैष्णो सोज सो परसो प्रसन्न
1: विष्ण की माया ते हुए भिन्न
0: कर्म करत हो वह निह कर्म
1: किस वैष्णो

0: नानक उस पंडित को सदा आदेश
1: मंत्र सर्व को ज्ञान
0: चहु वरना मैं जपे को नाम
1: जपे देश की गत होए
0: सा संग पावे जन कोए
1: कर कृपा अंतर उर तारे
0: अस प्रेत मुग्ध पाथर को तारे
1: रोग का औखद नाम
0: कल्याण रूप मंगल गुण गाम
1: काहू जुगत कित न पाई है धर्म।

0: स्वंत सुमटी
1: ऐसा अमृत सी बिख खाटी
0: ऐसा मान तैसा अवमान
1: ऐसा रंक तैसा राजान
0: जो वरता ऐसा ही जोगत
1: नानको पुरख कही है जीवन मुक्त
0: हर ब्रह्म के सगले ठाओ
1: जित जित घर रख है तैसा तिन नाओ
0: आपे करन करा बन जोग
1: प्रभाव है सोई पुन होग
0: पसरे आप होय अनंत तरंग।

0: रची बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी
1: कई कोट आचार बिहारी
0: कई कोट पै तीर्थवासी
1: कई कोट मन परमे उदासी
0: कई कोट वेद के श्रोते
1: कई कोट तो भी सर होते।

0: भय अभिमानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट पर दर्व को हिर है, कई कोट माया श्रम माहे, जित जित लावो तित तित लगना, कई कोट सिद्ध जति जोगी,
1: कई कोट राजे रस भोगी,
0: कई कोट पंखी सर्प उपाए,
1: कई कोट पात्र बिरख निभाए,
0: कई कोट पवन पानी बैसंतर,
1: कई कोट देश भू मंडल,
0: कई कोट ससियर सूर नक्षत्र,
1: कई कोट देव दानविंदर से छत्र,
0: सगल समग्री अपने सूत धार है, कई कोट राज स्थान सातक,
1: कई कोट वेद प्राण सिमरता शास्त्र,
0: कई कोट कीर्तन समुद,
1: कई कोट नाना प्रकार जंत,
0: कई कोट किए चिर जीवे,
1: कई कोट गिरी में सुन जीवे,
0: कई कोट जख किन्नर पिशाच,
1: कई कोट भूत प्रेत तुकर मिरगाच,
0: सब ते नीरह सब हूं ते दूर,
1: कई
0: कोट पाताल के वासी,
1: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी,
0: कई कोट जन्म है जीव है मर है,
1: कई कोट जोनी फिरे,
0: कई कोट बैठत ही खाहे,
1: कई कोट काले तक पाहे,
0: कई कोट किए तनवंत,
1: कई कोट माया में चिंत,
0: जह जय पाणा तह तह रखे,
1: नानक सब कुछ प्रभु के आते,
0: कई कोट भय बैरागी,
1: राम नाम संकन लागी,
0: कई कोट प्रभु को खोजनते,
1: आत्म में पार बमलांते,
0: कई कोट दर्शन प्रप्यास,
1: को मिलो प्रभु नास,
0: कई कोट मांगे सत्संग,
1: पार बम दिन लागा रंग,
0: जिनको हुए आप सुप्रसन्न,
1: नानक ते जन सदा संतान।

0: रस पीव है,
1: अमर पैसा सदी जीव है,
0: कई कोड नाम गुण गाव है,
1: तुमरा सुख सह सुमार
0: अपने जन को सास सास सुमारे, नानक होए परमेश्वर के प्यारे। सुलोक करण कारण प्रवेक है, दूसर नाही कोए, नानक तिस बलिहारण है, जल थल मही अल सोए अष्टपदी।

0: भिखारी नीच का कबु हुए बह बड़ राजा कबु भिखारी नीच का साजा
1: कीर्त में आवे
0: कबु भला भला कहावे
1: प्रभु राखे तभी रहे
0: गुरु प्रसाद नानक सच कहे
1: हुए पंड करे बख्यान
0: कबु मोन धारी लावे ध्यान
1: कबु तट तीर्थ स्नान
0: कबु सिद्ध साधिक मुख ज्ञान
1: कबु कीट हस पतंग हो जिया
0: अनिक जोन पर मैं परमिया
1: रूप जो स्वागी दिखावे
0: ज्यो प्रभाव तिवे निचावे
1: पावे सोई होए
0: नानक दूजा अवर न कोए
1: सा संगत पावे
0: उस स्थान ते बहुर न आवे
1: अंतर होए ज्ञान प्रगास
0: उस स्थान का नहीं विनाश
1: मंत्र नाम रत एक रंग
0: सदा बसह पार ब्रह्म के संग
1: यूं जल में जलाए कटाना
0: यूं ज्योति संग ज्योत समाना
1: मिट गए गबन पाए विश्राम
0: नानक प्रभु।

0: ओ जन नानक दर गय परवान
1: ओट कर्म करे हो तारे
0: ब्रह्म पावे सगले बिरथारे
1: अनक तपस्या करे अहंकार
0: नरक स्वर्ग फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दर गह कहो कैसे गवे
1: जो पला कहावे
0: किस है पलाई निकट न आवे
1: सर्व की रेंजा का मन होए
0: कहो नानक ताकी निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझते कछ होए
0: तब इसको सुख नाही कोए
1: जाने मैं किस करता
0: तब लग गर्भ जोन मैं फिरता
1: तारे को बैरी मीत
0: तब लग नेचल नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्म राय देश सजाए
1: सब कृपा ते बंधन टूटे
0: गुरु प्रसाद नानक हो छूटे
1: रहस खटे लख को उठता है
0: तृप्त न आवे माया पाछे पावे
1: अनक भोग विखिया के करे
0: नै तृप्तावे खप खप मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: सुपन मनोरथ वृथे सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: बड़ भागी किसे प्राप्त हुए।

0: अपनंतर एक कह सोई,
1: अपने चल तो आप करने हार,
0: कौतुक करे रंग अपार,
1: मन में आप मन अपने माहे,
0: नानक कीमत कह न जाए,
1: सत सत सत प्रभु स्वामी,
0: गुरु प्रसाद किने वख्यानी,
1: सच सच सच सब कीना,
0: कोट मधे किने बिरले चीना,
1: पला पला पला तेरा रूप,
0: अत सुंदर अपार अनूप,
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी,
0: कट कट सुनी श्रवण वख्याणी।

संत के दुखी को नाही ठाऊ, संत का दुखी अध बीच ते टूटे, संत के दुखी को ध्यान फरमाइए, संत का दुखी अंतर ते थोता, संत के दुखी की जड़ किचन।

0: संत का दुखी सदा सहकाइये, संत के दुखी की पूजै न आसा, संत का दुख न त्रिष्टे कोई,
1: जैसा भावै तैसा कोई होए,
0: भया कीर्तन मिटै कोई,
1: नानक जाने सच्चा सोए,
0: सब घट तिसके होकर नैहार,
1: सदा सदा तिसको नमस्कार,
0: प्रभु की उस्तुत करहु दिन रात,
1: सहते आवो सास ग्रास,
0: सब कछु वरतै तिसका किया,
1: जैसा करे तैसा कोथिया,
0: अपना खेल आप करने हार,
1: दूसर कौन गए विचार,
0: जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे, बड़ भागी ना

0: नानक जपे हर नाम
1: रूप भंत हो नाही मोह है
0: प्रभ की जो सगल कट सो है
1: धनवंता हो क्या को गर्व है
0: या सब किस किसका दी या दर्व है
1: सूरज को कहावे
0: प्रभ की कला बिना कहता है
1: जी को होए वह दातार
0: किस देन हार जान गावार
1: जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग
0: नानक सोजन सदा रोग
1: यो मंदर को थम थमन
0: क्यों गुर का शब्द मन अस्थम मन
1: यो पाखान नाव चढ़ तर
0: प्राणी गुर चरण लगत निस्तर
1: यो अंधकार।

0: साध सेवा बड़ भागी पाई है,
1: साध संग हर कीर्तन गाई है,
0: अनख बिगनते साधु राख है,
1: हर गुण गाय अमृत रस चाख है,
0: ओट गही संत है दर आया,
1: सर्व सुख नानक ते पाया,
0: मृतक को जीवा लनहार,
1: भूखे को देवत आधार,
0: सर्व निधान जाकी दृष्टि माहे,
1: पूर्व लिखे का लहना पाहे,
0: सब किछ तिसका ओह करने जोग,
1: किस बिन दूसर हुआ न होग,
0: जप जन सदा सदा दिन रहनी,
1: सब ते ऊच निर्मल करनी,
0: कर कृपा जिसको नाम दिया,
1: नानक सोजन निर्मल थिया,
0: जाके मन गुर की प्रतीत,
1: किस जन आवे हर प्रभु चीत,
0: भक्त भक्त सुनिए ते हलोए,
1: जाके हृदय को हुए,
0: सच करनी सचता की रहत,
1: सच हृदय सच मुख कहत,
0: साची दृष्ट साचा आगा।

0: आज्ञाकारी
1: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
0: के सेवक के मन प्रतीत
1: ठाकुर के सेवक के निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने।

0: सा सुमार है,
1: अपने जन का पर्दा टाके,
0: अपने सेवक की सर पर रखे,
1: अपने दास को दे बढ़ाई,
0: अपने सेवक को नाम जपाई,
1: अपने सेवक की आप रखे,
0: ताकि गत मित कोई न लाखे,
1: सेवको को न बूचे,
0: प्रभु के सेवक दे उचे,
1: अपनी सेवा लाया,
0: नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया,
1: कीरी मैं कर रखे,
0: प्रश्न करे लश्कर कोट लाखे,
1: सास न काट आप जतन करत बात,
0: इसके कर्तव्य थे जात,
1: मारे न रखे अवर न कोए,
0: सर्व जिया का रखा सोए,
1: सोच करे रे प्राणी,
0: जप नानक प्रभ अलख विडानी,
1: बार बार प्रभ जपिए,
0: अमृत मन तंत्र पिए,
1: गुरु को पाया,
0: किस किच अवर नाही दृष्टाया,
1: नाम

0: के ब्रह्म गवन
1: सुन नानक हर हज श्रवण
0: निर्गुण आप सरगुण भी ओही
1: कला तार्जिन सगली मोही
0: अपने चरित प्रभाव बनाए
1: अपनी कीमत आपे पाए

0: बृहस्पति संत जना मिलकर हो विचार
1: सिमर नाम आधार
0: अवरूपाव समीत विसार हो
1: चरण कमल हृदय में उतार हो
0: कर्ण कारण सो प्रभ समरथ
1: दृढ़ कर गहो नाम हर भथ
0: इहो तन संचो हो वो भगवंत
1: संत जना का निर्मल मंत
0: एकास रखो मन माहे
1: सर्व रोग नानक मिट जाहे।

0: मन पर बुद्ध हो हर कहनाई
1: आको
0: बिघन लागे कुए
1: कर
0: ताती ठंडा हर नाऊ पौविन से पूर्ण होया
2: स्वगत पाए
0: तित कर जाए विषय विनाशी सत विचार कह जन साचा
2: जन्म मरे स।

0: अस हस्ती रथ सवारी
1: झूठा डंभ झूठ पासारी
0: जिन दिए तिस बुझे न बिगाना
1: नानक बिस्ताना
0: गुर की मत तू लेहे आने
2: भगत बिना बोलू बेसाने
0: हर की भगत करहु मन मीत
2: निर्मल होए तुम्हारो चीत
0: चरण कमल राखहु मन माही
1: जन्म जन्म के तिल बिक जाए
0: आप जपहु अबरा नाम जपावहु
1: सुन के कहत रहत गत पावहु
0: सार को सत हर को नाओ
1: सहज भाए नान गुण गाओ
0: गुण गावत तेरी उत्तर समैल
1: मिल जाए हमें बिकवाल
0: ओहे अचिंत बसै सुख नाओ।

0: सुख होए,
1: शिव की मनसा पूरी पई,
0: सतगुर ते निर्मल मत लई,
1: जन को प्रभु दयाल,
0: शिव किन सदा निहाल,
1: बंधन काढ़ मुक जन पिया,
0: जन्म मरण दुख भ्रम गया।

0: जब अकार एह कछु ना दृष्टेता
1: पाप कुन तब कहते होता
0: जब तारी आपन सुन समाद
1: तब बैर विरोध किस संक मात
0: जब इसका बरन चेहन न जापत
1: तब हरक सो कहो किस है व्यापत
0: जब आपन आप आप बार ब्रह्म
1: तब मोह कहा किस होवत परम
0: आपन खेल आप मृतीजा
1: नानक करने हार न दूजा
0: जब होवत प्रभ के वर्तन ही
1: तब बंद मुक्त कहो किस को गनी
0: जब एक है हर अगम अपार
1: तब नरक सुर को कौन उतार
0: जब निर्गुण प्रभ सह सुपाए
1: तब शिव सकत कहो कित ठाए
0: जब आप है आप अपनी ज्योत है
1: तब कवन निडार कवन कत डरे
0: कवन चलद आप करने हार
1: नानक ठाकुर अगम अपार
0: अविनाशी सुखे अपन आसन
1: वह जन्म मरण कहो कहा विनाशन
0: जब पूर्ण करता प्रभ सोए
1: तब जमकी त्रास कहो किस होए
0: जब अवगत अगोचर प्रवेका
1: तब चित्र गुप्त किच पूछत लेखा
0: जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे
1: तब कौन छुट्टे कौन बंधन बादे
0: आपन आप ही अचरजा
1: नानक आपन रूप आप ही उपर जा
0: यह निर्मल पुरख पुरख पत होता
1: तह बिन मैल कहो क्या तोता
0: यह निरंजन निरंकार निर्वाण
1: तह कौन कौ मान कौन मान
0: यह स्वरूप केवल जगदीश
1: तह छल छिद्र लगत को कीश
0: यह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे
1: तह किसे भूख कवन तृप्तावे
0: करन करावन करने हार
1: नान करते का नाही सुमार
0: अपनी शोभा अपन संग बनाई
1: तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई
0: यह सर्व कला आप है प्रवीण
1: तह वेद कतेव कहा कोचीन
0: जब अपन आप और तार
1: तो सगन अपसगन कहा विचार
0: यह अपन

0: शल अशेद अभेद समाया
1: मुहा किसह व्यापत माया
0: आपस कहो आप आदेश
1: कह गुण का ना ही प्रवेश
0: यह कह एक एक भगवंता
1: कह कौन अचिंत किस लाग गए चिंता
0: यह अपन आप

0: को आप पह पहुँचाओ,
1: यह आप रचियो प्रपंच अकार,
0: यह गुण मह कीनो विस्तार,
1: पाप पुण्य तह पे ही कहावत,
0: ओ नरक को स्वर्ग बन चावत।

0: आठ पहर प्रभिक्ख हो नेरा
1: मिटे अज्ञान बिनसै अंधेरा
0: सुन उपदेश हृदय बसाव हो
1: मन इच्छे नानक भल भाव हो
0: हलत पलत दोए लेहु सुवार
1: नाम नाम अंतर उर तार
0: पूरे गुर की पूरी दीखिया
1: जिस मन बसै तिस साच परीखिया
0: मन तन नाम जपहु लिवलाए
1: दुख दर्द मन ते पहु जाए
0: सच व्यापार करहु व्यापारी
1: दरगह निवह खेब तुम्हारी
0: का टेकर।

0: सब धर्म
1: संत जना सुने सब वचन
0: सर्व व्यापी राम संग रचन
1: जिन जाता तिस की यह रहत
0: सत वचन साधु सब कहत
1: जो जो होए सोई सुख मान
0: करण करावन हार प्रभ जान
1: अंतर बसे बाहर भी ओही
0: नानक दर्शन देख सब मोही
1: आप सत किया सब सत
0: इस प्रभ ते सगली उत्पत
1: पावै ता करे विस्तार
0: इस पावै ता एकंकार
1: अनक कला लखी न जाए
0: इस पावै तिस लय मिलाए
1: कवन निकट कवन गई है दूर
0: आपे आपा भरपूर
1: अंतर्गत जिस आप जनाए
0: नानक तिस जन आप बुझाए
1: भूत आप

0: सुखमनी सुख स गोविंद गुण सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम
1: जिस मन बसे सो होत निधान
0: सर्व इच्छा ताकि पूरन होए
1: प्रधान पुरख

0: परमरात अपुत अलख पेश
1: अंग रागना रंग जाके जात पात नाम
0: गर्भ गंजन दस्पंजन मुक्त दाय काम
1: आप रूप मीक अन उस्तद एक

0: जति जत तार सब सो बिचार हजार क देख
1: हरि भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख
0: शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सना दुर जान दलेंगे
1: भारी गमान परे मन में कर पार्वत पंख हले न हलेंगे
0: तोर अरीर मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे
1: हरि भगवान कृपा बिन त्याग जहान।

0: गड़े गड़ान के तोड़न हार सो बात नहीं चक चार लवैया
1: साहिब सरी सब को सरनायक जाचक अनेक सो एक दवैया
0: दानव देव फनेंद ने साचर भूत भविख पवान जपेंगे
1: जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे
0: उन प्रतापन बाढ़ जैत तुन पापन के बह पूंज खपेंगे
1: प्रसन्न फरे जग सतन सवे अब लोग जपेंगे
0: मानव इंद्र गजेंद्र नरा तप जौन त्रिलोक को राज करेंगे
1: कोट स्नान गजाद दान अनेक स्वयंवर साज परेंगे
0: ब्रह्म महेश्वर बिसन सचिपत अंत फसे जाम फास परेंगे
1: ये नर सरिपत के प्रस पगते नर फिर न दे तरेंगे
0: कहा पयो जो दो

0: ऐसे ही ऐसे सुबह सुबह तायो।
1: साच कहूं सुन ले हो सवै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो।
0: काहू ले पाहन पूज तरयो सिर, काहू ले लिंग करे लटकायो।
1: काहू लखियो

0: को कर पाहन अनमानत।
1: महामूल कछ भेद न जानत,
0: महादेव को कहत सदा शिव।
1: निरंकार का चिंत न पेव,
0: आप अपनी बुद्ध है जीती।
1: वर्णत भिन भिन तेती,
0: तुमरा लखाना जाए पसारा।
1: केवल सजा प्रथम संसारा,
0: एक रूप अनूप स्वरूप।

0: सकल मलेश करो रण काता
1: शीर्ष तज तब सरनी परे
0: तिनके दुष्ट दुष्ट वह मरे
1: पुरख जवन पग परे तिहारे
0: तिनके तुम संकट सब तारे
1: जो कल को एक बार त्याय है
0: ताके काल निकट न आए है
1: नशा होए ताई सब काला
0: दुष्ट अरिष्ट तत्काला
1: कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो
0: ताके ताप तन कमय हर हो
1: वृद्ध सिद्ध कर्मो सब हो।

0: सुर नर मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत करते पाया
1: अमृत गुर कृपा गिनी सचा मन बसाया
0: जी जन सब तद पाए एक वेक परसन आया
1: सब लोग अहंकार चुका सतगुरु भला पाया
0: कह नानक जिसनु आप चुटा तिन अमृत करते पाया
1: भगत की चाल आली चाल आली भगत के लिए
0: लभ लोग अहंकार

श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दे राखे आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सहाई।

0: सदा गुरु गुरबानी।
1: बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार्षिक पाचे दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लेत्याय फिर अंकित कुरते अमरदास रामदास सहाय अर्जुन हरगोबिंद सिमरन श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कारण उन्होंने आया सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पातशाह के पुत्रात्मक स्वरूप साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पार दर ध्यान करके घर सच बोलो जी वाहे गरीब नवाज आप जी के पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हटिया जपिया चपिया जरा नाम चपिया वन चख्या दे चलाई ते वाई दे के ढेड़ किया तेना प्यार से त्यारा नहीं कमाई दस अंदर के बोलो जी वाहे गुरु जिन्ना सिंगा सिंगणिया धर्म है सी दिते बंद बंद कटवाए खूबरिया लवाइया चरखड़िया के चढ़े आर चलाए गए गुरुद्वारे सेवा से गुरबानिया की धर्म नहीं आ रहा सिखी से देखे सत्संग निभाया तेना भी कमाई दस अंदर के बोलो जी वाहे गुरु पंजा तख्त आसपास गुरुद्वारे दस्ते अंदर की बोलो जी वाहे गुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे नाम चेता है चित आमण का सद का सर्व सुख हो जहां जहां गुरु खालसा साहब चरियाज देख देख की फतेह वृद्ध की पहज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान चौकियां चंडे बूंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पा के राखे आप वाहे गुरु। गुरु की बनवाज पंजा सदार साहिब दता जी गुरुद्वारा ननकाणा साहिब पंजा साहिब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां तो आप जे पंथ नूं छोड़िया गया दर्शन दार से सेवा संभाल दता अपने खालसा जी ने बख्शो हे न्योटिया की ओर गुरु ने आसरिया आसरे गुरु धन धन गुरु दता दोहे कर जोड़ करो अरदास तुझ भावे ताने रास हे गिरी महाराज जी आपके चरण कमला दास पंजाब बख्श की जगरी महाराज अज ऐतवार हफ्ता वाली सुने की चंद्रबार अमृत दुद्ध लैके आपके चरण सज्जे तार कृपा करो जी जिस गरीब महाराज महाराजी वीर ने गरीब रवाज जी पुत्र गुरबाणी के कीर्तन गायन किए ने विद्वान भीर ने कथा विचारा की ने कृपा करो दता कोई भुल अटकों की माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सत खेल प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगतं के हिरदय सांडी कृपालता करो जी अगो तो शोध से पित्र बाणी विचार बन बुद्धि बख्शिश करो गरीब रवाज इस खुशी में आप जी बख्शिया दाता चार विचार दरकर सदा दीपाली समीर हेल्प परिवार की सुख शांति चाची करवा से बेनती करते हैं अज ऐतवार हफ्ता की दरबार की लंगर देगा की अटुट सेवा कर रहे हैं परिवार वालों 2500 डॉलर आपके चरणा पैसे के प्रवान कर दता सेवक ने कमाइया सब लोग कार्य वाद बख्श देता है सेवा प्रवान करो मेरे पैसे रख देता है अपने सेवक ने आप राजपात रखो सारे कार्य आप राज करो जी गुरु की महाराज सेवक की शुभकामना पूर्ण करनी है परिवार का सुख रखो कमाइया सफल करो जी दादा जी आपके चरण धनबाद का आदर कर सकता चैन परवैद परिवार की सुख शांति वास्ते बिल्डिंग फास्ट वास्ते सरकार पिता जी 2100 डॉलर आपके चरणा भेटा कदने प्रवान करो जी गिरी महाराज परिवार की रोकता चढ़ कला बख्शिश करो काका नितेश साई गिरी महाराज परिवार पहली पढ़ाई वास्ते बेनती करते हैं बिरत मालिक हालत पर प्रवान करो कदका सैनी सुवराज सैनी गिरी महाराज जॉब वास्ते बेनती करते चरणा प्रवान करो जी मनजिंदर सिंह परिवार की चढ़ कला वास्ते बिरत मालिक हालत प्रवान करो जी गिरी महाराज भाई स्वर्गवासी भाई बलजीत सिंह की आत्म शांति वास्ते परिवार बेहत मैं भेटा जाना प्रवान करो जी शोकी परिवार विरधी परिवार सगु परिवार चढ़ी कला वास्ते बेहत मैं खातरे प्रवान करो जी गरीब राज रणवीर भसीन यूनिवर्सिटी की पढ़ाई वास्ते जारी कामयाबी बख्शिश करो जी गरीब राज तरनजीत सिंह की सर्जरी होनी है सफलता वास्ते बेनती करते हैं बेहत मैं खातरे प्रवान करो जी बच्चा सिंह मेरा पातशाह जी कॉलेज शुरू करना तार पिता जी कामयाबी वास्ते बेनती करो कृपा कृपा बख्शिश करो गरीब नवाज प्रवान बेनती करते हैं जी बच्ची शायना मेहरा ने नवी जाब शुरू की है गरीब नवाज कामयाबी वास्ते बख्शिश करो तरक्या दाज बख्श करके बात करो जी बच्ची कीवी कौर परिवार जी परिवार बच्ची कीवी कौर पहली बार लैके आपने चरण सारे बैंक माया पेटा प्रवान करो जी बख्श करते बच्ची कीवी कौर तंदुरुस्ती बख्शो लंबी आयु बख्शिश करो जी गुरु गरीब नवाज कृपा करो अमृत वेत लैके दर्ज आई साफ संगतान की हाजिर दर प्रवान करो घड़िया लिख लाओ संगतों का दर्ज सिर फिर पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी गरीब नवाज आप चरण सेवा कर सारे टैली सिंगा सिंगणियों तंदुरुस्ती बख्शो चाटी कर बख्शो सदा इस तरह अपने चरण सेवा की ਭਾਵਨਾ ਬਦਲੇ ਪਾਲਦਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਕਰਨ ਬੈਠੀਆਂ ਲਾਈਵ ਕਰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਘੜੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਓ ਤੇ ਤਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਸੰਗਤ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਹਰ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰ ਚਰਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਸ਼ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲ ਕਰੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਿਤਰ ਗੁਰਨਾਮੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਪਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੈਦ ਕੀ ਰਮਤਾ ਵਾਸੀ ਆਗਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚੰਨਾ ਧਨਵਾਦੀ ਬਣਾਓ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਰਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਅਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੇ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ।

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह दा जवाब फतेह विच दिओ जी, बेनती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चो। असी साड़ी थोड़ी जी देरी इसलिए हो रही है कि अज टीचर्स ने रिजल्ट भी इत्थे देने सन अपनी क्लासेस नूं, ते हुण आई होप सारियां क्लासेस रिजल्ट लैके जा चुकी हैं। ते हुण असी अपना प्रोग्राम जल्दी शुरू करने वाले हैं। उन्हीं देर संगत नूं बेनती है कि सारे अपने अपने सुशोभित हो जान, संगत दे तौर ते सज जाओ जी दरबार हॉल दे विच।
ते आपा फिर प्रोग्राम शुरू करांगे। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। वाहिगुरु जी ने बख्शिश की सानू ए सोहना खुशियां दा दिन दिता। आज साडे गुरु नानक खालसा स्कूल दा 37वां साल 37th ईयर जिहड़ा साडा अज कंप्लीट होन जा रहा है। सो सानू ए खुशियां दा मौका मिलिया। वाहिगुरु ने समत बख्शी, वाहिगुरु ने समर्था बख्शी कि असी इत्थे तक पहुंच सके। सब तो पहला धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का कोटान कोट धनवाद है जी। ते सारी संगत का सब तो ज्यादा नाल जुड़न लई सब का धनवाद। हुण मैं बेनती करूंगी, संगत सज गई है ते खालसा स्कूल दे 37वें साल दे जिहड़े बच्चे ग्रेजुएट होन जा रहे, अज गुरु चरणी लगन जा रहे ने, ओ बच्चे हुण वॉक करनगे गुरु जी दे दरबार दे विच आणगे। बच्चे आणगे, मत्था टेकनगे, उस तो बाद असी अरदास करांगे, हुक्मनामा लिया जावेगा। चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल, सतगुर कोट पेंडा आगे होए लेत है। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे दी बख्श सदका ए बच्चे आज गुरु दरबार विच तैयारी करके अपना जिहड़ियां ग्रेजुएशन दियां जो रिक्वायरमेंट सन पूरियां करके इत्थे पहुंचे ने ते गुरु जी दे चरणी लगन लई बच्चे इत्थे हाजिर होए ने। वाहिगुरु जी इन्हां नूं अपने चरणी लाउण। सारे बच्चे मत्था टेक के तुसी इत्थे ही खड़े रहना। बच्चा सेवक सिंह पहली अरदास, सॉरी बच्चा साडा फतेह सिंह अरदास करेगा। जिहड़ा साडे ग्रेजुएट हुंदे ने बच्चे, ओ साडे बच्चे अरदास करदे आ। जिहड़े पुराने ग्रेजुएट साडे हुंदे ने ओ हुक्म लैंदे ने, ते सेवक सिंह बच्चा हुक्मनामा लैण लई तैयार रहे। फतेह सिंह तुसी अरदास करना।

आए मिल गुर सिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे। हुण तुहाडे सन्मुख जिहड़े भाई साहब जी भाई हरजिंदर सिंह जी सन्मुख हो के गए ने, तुहानू असीसां दे के गए हन गुरु दे प्यारे गुरु दे सवारे, तुहानू सोहणियां असीसां बख्श के गए हन, उहनां दा असीं दिलों धन्नवाद करदे हां। भाई साहब दा साडा दिल करदा सी भाई साहब बच्चियां नूं इनाम भी दे के जांदे, सारे समागम दे विच शामिल रहिंदे, पर उहनां दे रुझेवियां करके उहनां नूं हुण शायद जल्दी जाणा पैणा है, पर ओह तुहानू अपनियां असीसां दे के चले ने। भाई साहब जी दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। हुण चरनी लगन वाले बच्चे जिहड़े होणगे ओह आउणगे आपे, बाबा जी ताबिया जिन्हां ने बैठना है ओह बच्चे आउणगे, जिहड़े बच्चे सैंची तों जाके पाठ करनगे सारे बच्चे आ जाओ जी।

एक एक बैग दे देंगे, किसी एक दे देंगे बैग ड्रॉ दे बच्चे हाँ जी। पहले

संगत जी जकारे जोर दी छड़ो। फतेह सिंह, सत श्री अकाल। सारी संगत वास्ते प्रसाद है जी, प्रसाद भी लेके जाना, सजे रहना इस तरह। अवार्ड सेरेमनी तो बाद गुर रहमत कौर सेखो, सत श्री अकाल। इन्हां सारिया बच्चियां ने अरदास याद कीती है पहला हिस्सा, ते कुछ बच्चियां ने पूरी अरदास याद कीती है जी। जिया कौर बंगा, जिया कौर बंगा, सत श्री अकाल। पवित्र सिंह धामी अगे बच्चा, सत श्री अकाल। उत्साह मध्यम नहीं पैना चाहिदा जी। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। रायसा कौर, सत श्री अकाल। ए बच्चे बाबा जी दी ताबिया बैठे सन। तनवीर कौर बेदी, बाबा जी दी ताबिया बैठे सन। बच्चे आओ जी, सत श्री अकाल। कीरत कौर सैगल, कीरत कौर बच्ची ने बहुत मेहनत करके अखीरले दिनों दे विच पाठ याद किया, शाबाश बच्चे। सत श्री अकाल। अगे बच्ची है एंजल प्रीत कौर। एंजल प्रीत बेटे थैंक यू सो मच, तुसी बहुत सोहनी अरदास की, बहुत बहुत धन्यवाद, शाबाश। सत श्री अकाल। एकमजोत सिंह धामी, बच्चा एकमजोत सिंह धामी, सत श्री अकाल। गगनदीप कौर, गगनदीप कौर बच्ची, सत श्री अकाल। गुरशान सिंह दौला, गुरशान सिंह दौला, सत श्री अकाल। गुरशान सिंह, इस बच्चे ने भी सारी अरदास याद की है। बहुत मिठ बोलड़ा बच्चा, बहुत सोहनी पंजाबी बोलता है, ते बहुत सोहनी अरदास करता है। थैंक यू बच्चे। सत श्री अकाल। जगजोत सिंह, जगजोत सिंह बच्चा, बच्चा है बाबा जी दी ताबिया सन ये भी। सत श्री अकाल। जपजोत सिंह, सत श्री अकाल। ये भी बच्चे बाबा जी दी ताबिया बैठे सन, खड़े सन एक्चुअली। जस कीरत कौर, जस कीरत कौर, सत श्री अकाल। निश्चय सिंह कालड़ा, जे कोई खालसा स्कूल दा होर कोई टीचर बैठा रह गया तो प्लीज आ जाओ अगे बच्चा नु अवार्ड देने ले। प्रभ कीरत सिंह, प्रभ कीरत सिंह, सत श्री अकाल। रिया कौर मान, बच्ची रिया कौर मान,

सच कीरत कौर बच्ची एवी बाबा जी दी ताबिया बैठे सन। सत श्री अकाल। सवन शर्मा। सत श्री अकाल। हाँ जी समन पिछे कर लो, पिक्चर ला रहे हो दी। समन थोड़ा पिछे हो जाओ बेटे। हाँ फिर ताड़ी वारी आंदी है। हाँ जी हुन आ जाओ। समन शर्मा बोले सो निहाल श्री अकाल। समरथ सिंह। समरथ सिंह बच्चे बहुत सोहनी तरह तुसी बाबा जी दी ताबिया बैठ के पाठ किया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शाबाश। इसी तरह गुरु दे लड़ लगे रहना जी। सत श्री अकाल। सरूप कौर बाहत। सरूप कौर बाहत ये बच्ची भी बाबा जी दे ताबिया बैठे। सत श्री अकाल। सुखमनी कौर पंगू। चिंतन जाओ थे प्लीज जाओ। सत श्री अकाल। सुखरीत कौर धामी। साड़ी इस क्लास दे विच शायद तीन या चार सेट ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर सिबलिंग्स दे जेड़े ग्रेजुएट होए ने इस वारी। सुखरीत कौर धामी अर्शीन कौर बच्ची साड़ी रिमोट क्लास की बच्ची है। ए भावे रिमोट क्लास ले रहे सी पर ए हर क्लास आंदे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटे ताड़ा भी ताड़े पेरेंट्स का भी जेड़े तुहानू भी आंदे रहे। अर्शीन कौर सत श्री अकाल। बच्ची रिया सिंह। रिया सिंह सॉरी बच्चे माय मिस्टेक।